ये तो फल मैं तो लेता हूँ फल मैं साजन बाल होता हूँ उससे मैं तो चेक मल चेक फल तो कोसी क्राइक मलाते हैं ही मार्क्स उतने क्राइक मार्क्स में साज उस क्राइक बलाते हैं वो फुफल में साज ने लाए ये तो फल मैं तो ये कलां दिए ना फातिम बाबी एला सेवास नॉन नॉइ नॉइ नॉइ बामस ऑन बिंग आंसर आया